0: ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਗਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ 905-673-3337 ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-673-3337 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਈਨੋ ਫੈਨਸ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਫੈਂਸ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਫੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਇਕਬਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਈਨੋ ਫੈਂਸ 647-804-3220 ਨੰਬਰ ਹੈ, 6478043220, 6478043220। ਸਰਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ। ਸਰਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
1: ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ।
0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਸਰਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਦਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਾਸ਼ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ?
1: ऐसे आज की तीन एक्सपीरियंस हैं इसमें। एक तो आपके लाइक आपके शो सुन के आपके अच्छे लिसनर हैं, वो आए, वो कहते कि उनकी जॉब नहीं लग रही थी कनाडा में, तो उन्होंने आपके शो पे फोन करा, उनकी पिज्जा शॉप पे आपने जॉब लगवा दी।
0: अच्छा,
1: कहते नवी, नवी कहते नवी काम करा देते हैं, कहते नवी का फिर आपका सुना मेरा सुना, मतलब फिर वो यहाँ पे आके रजिस्टर करा लिया उन्होंने।
0: क्या बात है।
1: फिर हाँ जी हाँ, तो कहते कि पहले किसी और पे गए थे, वो $1,000 मांग रहे थे उनसे अपफ्रंट, और कोर्स भी उनके पास अच्छे नहीं थे। फिर वो हमारे पास आपको शो सुन के आए, एंड देन आज हस्बैंड वाइफ दोनों रिटेन हो गए हैं। और दूसरा आज यूनिक चीज हुई कि एक क्लाइंट आए, उनका जैसे अप्रूवल आए, तो मेरे $200 देने आए थे, $100 ज्यादा दे के गए, कहते पिज्जा खा लेना। तो एक और यूनिक चीज बताई उन्होंने मुझे कि जिनको उन्होंने रेफर करा था वो उनसे $1,000 मांग रहा है।
0: अच्छा,
1: तो क्या कह गया उसे मत बताना कि मेरा अप्रूवल आया है।
0: अगर अगर सराज मैं $100 मांगने लग पड़ा तो मेरा तो बैंक अकाउंट फुल हो जाएगा।
1: वो लेकिन लालच, उन्होंने जो हमारा स्टूडेंट है उन्होंने दूसरों को रेफर करने के लिए उससे 1,000 मांगा, हमारी फीस 200 है, वो उससे 1,000 मांग रहे। देखो लालच का ये दिक्कत है, अगर उन्होंने 100 मांगा तो वो दे भी देते उनको, राइट?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: 1,000 मांगा तो उसने बोला कि भाई बता दे मत, मेरा अप्रूवल है, प्राइवेसी है।
0: चलो नहीं, सराश इज नंबर वन। सो सराश का नंबर है 4372643175। सराश सब नु इहदे बारे दसो कि हुण फंडिंग बदल रही है ते ग्रांट्स बंद हो रही ने, सो इहदा की मैसेज है?
1: लाइक यही चीज है कि आप ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं, सिर्फ 27 दिन रह गए हैं, आप आज भी एनरोल करके गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स करके स्किल भी डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने अकाउंट में 30,000 to 100,000 की फंडिंग हासिल कर सकते हैं। मजे की बात यह कि इस रेंज में से हाफ पोर्शन तो ग्रांट्स है जो वापस ही नहीं करना आज की डेट में स्टार लगा के, क्योंकि 27 दिन बाद अगर आप एनरोल करेंगे तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही, लोन ही आएगा आपको, लोन का आई डोंट थिंक आपको इंटरेस्ट होगा, बट आज एनरोल करें, ग्रांट लें, आप स्किल भी हासिल कर रहे हैं, आसान से फुली ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, फंडिंग आपके खाते में आती, हमारे खाते में नहीं आती, और लाइक देयर इज नो हिडन थिंग इन दिस।
0: सो नंबर है सराज दा 4372643175 ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਇਨਕਮ ਕਮ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 70,000 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
1: बिल्कुल जी, ये चीज है ही आम आदमी के लिए, अगर आपकी इनकम कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, किसकी होती है वो? सेल्फ एम्प्लॉयड, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड, आपको इसमें बड़ा ज्यादा एडवांटेज है, प्रोग्राम आपको ही सूट करता है अगर आपकी इनकम कम है। लोग हमें फोन करते हैं शर्मा के, कहते हैं सर हमारी इनकम 15,000 है, मैं कहता हूँ बढ़िया बात है, ज्यादा होती तो आपको फायदा ही ना होता। तो अगर आपकी इनकम कम है, आपको गवर्नमेंट ज्यादा सपोर्ट करती है, और आप लाइक अगर फैमिली ऑफ 5 है, अप टू 100,000 की फंडिंग आती है, 50,000 उसमें से ग्रांट है, अगर फैमिली ऑफ 2 है तो 45,000 की फंडिंग आती है, उसमें से हाफ पोर्शन 25,000 तो ग्रांट है। तो मतलब आप हमें लाइक देयर इज नो कैच इन इट, आप हमारे ऑफिस आए, थोड़े से ही दिन रह गए हैं, कोई एज लिमिट नहीं है जी इसमें, आप 50 के हैं, पेंशन पे हैं, 75 के हैं, आप आराम से बेसिक इंग्लिश आपको आती है, अटेंडेंस लगाएं, 2-3 घंटे क्लासेस लगाएं, स्किल हासिल करें, आसान से कोर्सेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, कॉल करें, ऑफिस आएं।
0: 4372643175 सराज, थोड़ी फीस एक बार दस दो, सारे कोर्सेज की ऑनलाइन ने?
1: ज्यादातर कोर्सेज फुली ऑनलाइन है, क्लाइंट्स को चाहिए आसान कोर्सेज क्योंकि वो एक लाइक मिडिल एज में हमारे ज्यादा क्लाइंट्स हैं, उनके पास वैसे ही फैमिली की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो इतना ही हाउसवाइफ ऊबर ड्राइवर लाइक हम लाइक 8 साल से धंधे में बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं, हम शुरू नहीं कर रहे काम, बहुत टाइम हो गया हमें, और इसमें लाइक फंडिंग आपके अकाउंट में आती है, आसान कोर्सेज है, ऑनलाइन है, और लाइक असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है, और आप क्या लेंगे, आप स्किल भी सीख रहे हैं, अकाउंटिंग सीखे, मैनेजमेंट सीखे, ऑन अदर हैंड हमारे पास एचवैक जैसे हार्ड कोर्सेज भी है, PSW, अर्ली चाइल्ड असिस्टेंट, उसमें आपको इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा, पहली क्लियर बात है। तो आप ऑफिस आए, गवर्नमेंट आज फीस पे कर रही है आपकी, आप पढ़ रहे हैं, फीस गवर्नमेंट पे कर रही है, ऊपर से गवर्नमेंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए फंडिंग आपके खाते में दे रही है 30 से 100,000 डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज। मैरिड है फायदा है, मैरिड विद किड्स है और फायदा है, सिंगल है तो फायदा नहीं है, कॉल ना करें।
0: वेरी गुड नंबर,
1: नंबर जी 437-264-31-75, 437-264-31-75, तुसी हुणे भी कॉल करके एस्टीमेट चक सकते हो जी, ऑफिस साडा कल भी खुलाएगा, 437-264-31-75, 437-264-3175, फीस हमारी 199 या 499, शुरू में नहीं, जब फंडिंग आपके अकाउंट में आती है तब आपने अपनी ईमानदारी से देनी है। 437-264-31-75
0: 437-264-3175 बहुत शुक्रिया सुराज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रोग्राम पे जा भी रहा, तो ये नंबर है अपना 905-673-3337, 905-673-3337 अपना फोन है, नंबर है, तो 40 दिन फिल्म लग चुकी है भाई, अज भी हम 9 बजे शो है सिल्वर सिटी ब्रैम्पटन, बाकी हरेक थिएटर दे विच लगी हुई है, देबी मखसूसपुरी लीड रोल, गुरप्रीत घुग्गी, घुग्गी साहब का बेटा, बहुत सोहनी फिल्म, 40 दिन अपने नेड़ले सिनेमाघर जाओ देखो, 40 दिन रूफ नवी लवानी है, रूफ की रिपेयर करवानी है, पैशन रूफिंग दे गुरलाल भाजी, बहुत सारा एक्सपीरियंस, फुली इंश्योर्ड कंपनी, पैशन रूफिंग 647-913-6479-199-4-13, पैशन रूफिंग। सुख भाजी भी साढ़े नाल ने एक बार फिर ग्रैंड होम फर्नीचर जी भाजी,
2: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नवी भाई जी, बिल्कुल परिवारां नूं सद्दा पत्र दे रहे हैं जी, सैचरडे संडे जिहड़ी कैनेडा डे सेल लगी हुई है, परिवारां ने किसी भी तरह की फर्नीचर की बाइंग करनी है, तो सैचरडे संडे तुसीं इह 2-3 हुण मिस नहीं कर रहे क्योंकि साल दीआं सब तो लोएस्ट प्राइस मिल रही है फर्नीचर के उपर, तुसीं अपने मास्टर बैडरूम अपग्रेड करना चाहते हो, डाइनिंग टेबल लेना चाहते हो, हार्ड फोम के मैटर चाहिए ने, रियल मार्बल के डाइनिंग टेबल चाहिए ने, तो साल दीआं सब तो घट कीमतां जिहड़ियां फर्नीचर के उपर मिल रही है, तो नाल बड़े बड़े अपलायंसिस जिहड़े तुसीं फ्री अपने घर लेके जा सकते ਦਿਓ, ਸੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਟੀ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਡੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਟੀ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਟੀ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਸਿਰਫ 399 ਦਾ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਟੀ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ 399 ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੈਟਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਆ 6685 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6685 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ, ਡੈਰੀ ਟੋਮਕਨ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਈਵੇ 410 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6685 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ, 6685 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੇਲ ਸੇਲ ਸੇਲ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ।

सतगुर होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कब हूँ झूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानी है, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू।

जोड़ी तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है। अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और समर का जो मौसम है वो आपके लिए चल रहा है और थोड़ी थोड़ी बरसात, थोड़ी थोड़ी ठंड, थोड़ी थोड़ी गर्मी, बहुत ही प्यारा सा मौसम है। और अब आपके लिए बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, जिनके बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। और पिछले हफ्ते आप सभी ने फादर्स डे मनाया, तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, टीवी बढ़िया लेके आना चाहते हो, आउटडोर, अभी समर है तो आपको बढ़िया आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यूज चाहिए, लेटेस्ट किचन गैजेट्स चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए सेंट्रल मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। और उनकी स्पेशल देखने के लिए, समर स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस electronics.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा 905-7099-0045-799-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
1: मक्की, बेसन, पिस्ता, बर्फी।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਫੋਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1850 ਐਲਬਮ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1115 ਤੇ 116-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अब आपने घर खरीदना बेचना है तो आप किचन और वाटरलू पार्क में नसीब खंड को कॉल कीजिए 519-546-1260-519 546-1260। घर खरीदने के बाद एकदम आपको ख्याल आता है मूविंग का, तो मूविंग के लिए एचके मूवर्स आपके लिए तो कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-704 416-524-6704 मूविंग के लिए। सबसे बढ़िया आपकी सेवाएं मिलती हैं कम्युनिटी में। तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स। तो आइए आज का मौसम के ही मुतल्लक गाने सुनाए जाए, तो क्या ख्याल है कि मौसम इतना खूबसूरत है, तो उसी के मुतालिक आपको सुनाते हैं। लता जी का गाया हुआ मीना कुमारी के ऊपर फिल्म आया गया था ये गीत पकीज़ा में, तो वही गीत आपको सुनाती हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको इसी तरह आपका मनोरंजन करते रहेंगे। तो आपको बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाने वाली हूँ। पहले आपको बता दें कि अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाया है तो अब आपके लिए मास्टर लीजन डिपो लंदन में मौजूद है गौर रोड पे। तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पर जानकारी ले लीजिए, और किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो का नाम याद रखिएगा। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर चाहिए तो आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है, तो आप उनके बढ़िया बढ़िया सामान लेने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-709-00-4599-0045। न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया पे मौजूद है, और जानकारी के लिए 905-814-1730 पर आप लाइव कुकिंग करवाने के लिए उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको गीत सुनाते हैं, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, राज फिल्म आई थी 1967 में राजेश खन्ना की।

0: गाना थोड़ा सा सैड है, लेकिन थोड़ा मौसम के लिए, जैसे आजकल मौसम बहुत अच्छा है तो कई बार ऐसा महसूस हो जाता है आपको, इट्स ए गुड फीलिंग समटाइम्स। तो आइए, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। तो आजकल बहुत सारी जो न्यूज है बहुत किस्म की आ रही है बाहर से, जब तक हमारा प्रोग्राम आता है वो जो न्यूज होती है वो सारे आप तक पहुंच जाती है। तो फिर आपके लिए ये जो न्यूज है तो फिर थोड़ी हम रिपीट वही न्यूज आपको दोहराते नहीं, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी सी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपको सुनानी चाहिए। जैसे कि जिस दिन भगवान देने पर आते हैं उस दिन किस्मत नहीं देखते, और जिस दिन बचाने पर आते हैं उस दिन हालात नहीं देखते। आज जो लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। बस आप मेहनत करते रहो क्योंकि समय सबका आता है, याद रखिएगा। घड़ी को कोई नहीं चढ़ाता फिर भी वह चलती रहती है। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों रुकिए मत, तो दिल को अपने कायम रखिए, अपने आप को कायम रखिए, बस अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए, तो आप जरूर। एक लड़का है इंडिया में 14 साल की उम्र में, वो उसने 141वीं मंजिल पर ऑफिस अपना बनाया है। यह जैनम जैन 14 साल के हैं, भारतीय मूल के हैं, तो मैंगो इंजन AI टूल्स बनाते हैं जो बिजनेस की मार्केटिंग, ग्राहकों तक पहुंच और ग्रोथ में मदद करते हैं। तो वह 6 साल की उम्र में बिजनेस मीटिंग्स में जाना शुरू किया, 13 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई पूरी की, कई पेटेंट, TEDx स्पीकर और इंटरनेशनल अवार्ड में के विजेता हैं। तो यह है मैंगो इंजन AI स्टार्टअप। तो मैंने कहा कि आपके लिए थोड़ा एग्जांपल हो, छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरा कहने का है कि अगर हमें जिंदगी में सीखना है तो कहीं से भी आप अपने छोटों से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप बस आसपास देखते रहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर के आगे बढ़ सकते हो। अब आपके लिए एक और गाना मैंने चुना है, बहुत ही बढ़िया सा गीत है, तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ओकलिजन का काम करवाना है तो मास्टर ओकलिजन डिपू लंदन में मौजूद है, गोर रोड पे, तो मास्टर ओकलिजन डिपू .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हैं। आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर अपने घर में, बढ़िया TV लेके आना है, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको लेटेस्ट मॉडल्स मिलेंगे और स्पेशल प्राइस पे मिलेंगे। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और फिर उनको कॉल कीजिएगा अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। तो ये नंबर है आपके लिए 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको एक और गीत बहुत ही रोमांटिक सा आपको सुनाते हैं। तो ये फिल्म गीत आई थी 1970 में, संजीदर कुमार,
1: दिल लुभाते रहे,
0: हसरत जयपुरी के लिरिक्स है,
1: ये म्यूजिक के लिए
0: है।
1: तो नहीं

चरणों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी। तो जिसकी पायल पे जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, तो रात को भी आपकी सेवा में जरूर ही हाजिर हो जाएंगे। तो इस हफ्ते आपने निर्जला एकादशी भी मनाई। आपको याद होगा कि निर्जला एकादशी के दिन इतने सारे घड़े लोग एक दूसरे को गिफ्ट में देते हैं और पानी भर भर के गिफ्ट में देते हैं। जगह जगह लोग शबीले लगाते हैं तो ठंडा पानी पिलाते हैं। तो वो जो दिन है आपको याद होगी, जब निर्जला का यही दिन होता था, निर्जला एकादशी वाला दिन, जिसमें ये किया जाता था कि लोगों को पानी पिलाया जाता था, शबीले लगती थी और भी बहुत सारे। गर्मियों में जितनी गुरुओं के दिन आते थे उसमें भी हर जगह पे शबीले लगती थी और बड़ा बहुत ही बढ़िया सा वातावरण उसमें क्रिएट होता था। अगर आपको मूव होना है तो एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आप की उनकी बहुत सारी टीम होती हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो और आपको अगर मूविंग के लिए बुकिंग करनी है तो 416-524-704 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 H।

0: जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सारे गामा कारवा।
0: अगर आपको किसी किस्म का भी आपने प्रेस्टो वॉशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको बहुत बढ़िया सामान मिलता है। अब आज बच्चों को छुट्टियां हो गई है तो आपको क्या है कि गाड़ी ध्यान से चलाना, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, तो कोशिश करिए मेन रोड से जाइए, बीच वाली सड़कों से ना जाइए। आपके लिए भी सुरक्षा और बच्चों के लिए भी सुरक्षा, ताकि आपका लाइसेंस महफूज रहे। सो इसलिए तो अब आपको सुनाते हैं पंजाबी का गाना। तेरी कनक दी राखी मुंडिया हुण मैं नहीं वेंदी। तो हमारे प्रोग्राम का समय भी समाप्ति की तरफ है। तो दो लच्छियां फिल्म आई थी ना ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की, तो उसी का ये बहुत प्रचलित गाना है। ये जो गाने हैं भूले बिसरे गीत कभी कभी सुनने को मिलते हैं। तो आपको अब आपसे विदा लेती हूँ, नानक नाम चढ़ती कला, हैव अ वंडरफुल एंड सेफ ड्राइव। तो अब इस गीत के साथ एंजॉय द सॉन्ग।

दर्शन बलिया जानू अपनी देना पसाने दाकी पाना कुड़िये ओ पाले प्यार दगाना तमें दिल तहनो देना वार चुपनियो लेंदी मैं दिल पहनो देना वार को क्यों नहीं लेंदी।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहत स्यों

सतगुर होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कभू चूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख न जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। जुड़ चुके जी एक बार फिर खूबसूरत सवेर चढ़दी कला वाली सवेर दे विच, शनिवार की चढ़दी कला वाली सवेर और खूबसूरत धुप दियां किरणां चढ़दी कला दियां प्रतीक ते खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां लैके मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संधू

0: चलो जी हम सारे जाने कर दो अपने स्ट्रेस का लेवल डाउन ते अपने रेडियो दा वॉल्यूम अप हुन असीं सारे तुहाडे नाल हैगे आ 1 बजे तक ते तुसीं सुन रहे हो साडा शो रेडियो आवाज अज असीं बहुत सोहणियां सोहणियां गल्लां लैके आवांगे तुहाडे नाल शेयर करांगे ते तुसीं वी सारे सानूं इक वारी कॉल करके दसो तुसीं सानूं सारे कित्थों सुन रहे हो ते साडे स्टूडियो दा नंबर हैगा 905-673-3337 905-673-3337 ते मेरे नाल अज मेरे साथी कलाकार काफी ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ ਪੰਕਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਇਤਨੀ ਬੜੀਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ धन्यवाद थैंक यू सो सारे रेडियो लिसनर्स नु पंकज पंजाबी की तरफ से सलाम नमस्ते आदाब आज का दिन वीकेंड चालू हो गया है जी वीकेंड एंजॉय कीजिए और आप सुन रहे हो जी रेडियो आवाज रेडियो आवाज आप हमें सुन सकते हो जी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कनाडा में और यूएस में भी आप हमें सुन सकते हो लंदन सार्निया से लेके आप हमें बैरी सडबरी वहां तक आप हमें सुन सकते हो जी और नायग्रा फॉल्स से लेके आप बैरी सडबरी तक भी हमें सुन सकते हो न्यूयॉर्क वॉशिंगटन और पेंसिल्वेनिया यहां पे भी अगर आप हो तो आप हमें सुन सकते हो अगर आप ये कोई देशों में नहीं हो आप हमें इंटरनेट के थ्रू सुनना चाहते हो तो आपको डाउनलोड करना है जी एक सिंपल ऐप सिंपल रेडियो ऐप आप डाउनलोड कीजिए और उसमें आप सिलेक्ट कीजिए जी रेडियो आवाज 5:30 AM तो वहां पे आप हमें सुन सकते हो अगर फोन पे सुनना चाहते हो तो 416-477-2040 ये नंबर पे आप कॉल करके आप हमें लाइव सुन सकते हो चलो जी आज का सफर शुरू करते हैं हम आपके साथ जुड़े रहते हैं जी 10 बजे से लेके 1 बजे तक
0: जी।
1: बहुत सारी बातें करेंगे संतोष जी और इतने थोड़े एक गैप के बाद मैं आया हूँ तो थोड़ी सी एक एक्साइटमेंट है
0: या बिल्कुल
1: हाँ जी
0: बिल्कुल, क्योंकि काफी फैन है पंकज पंजाबी जी
1: नहीं एक हौसला अफजाई है जी हौसला अफजाई है एक प्यार होता है जी और एक कनेक्शन बन जाता है जैसे यू नो कंटिन्यूएशन में आप आते हो बट रियली इट्स बहुत ही सुहाना सफर होता है जो वीकडेज में 1 घंटे होता है 3 घंटे बातचीत होती है नॉलेज शेयर होता है इन्फॉर्मेशन शेयर होती है बहुत सारी डीलर भी होती है संतोष जी
0: बहुत सारिया डील्स असि लेके आंदे हैं और साडे स्पॉन्सर सानू बहुत सोहनिया सोहनिया डील्स दसणगे अज सारे
1: हां जी हां जी
0: सो तुसी एक बार सानू कॉल करके दसो तुहानू साडी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है
1: हाँ जी
0: जे आ रही है तो तुसी जल्दी जल्दी कॉल करो 905-673-3337 ते 905-673-3337
1: तो संतोष जी अभी आज वीकेंड है तो वीकेंड में कुछ स्पेशल होने वाला है आज
0: हां जी आज पंकज जी सारा नु भुख लगवा दवांगे असी इन्निया सोहनिया डील्स लेके आ रहे तवा किचन वाले ते नजारा वाले
1: हां जी
0: सो नजारा दा रिसेंटली मैं उन्हां दा पेज फॉलो करदी आ पंकज जी सो रिसेंटली मैं देख रही सी उन्हां दे उत्थे पार्टी हैगी आ होई सीगी इन्नी वधिया पार्टी जे किसी ने भी पार्टी करनी आ और कोई छोटी भी गेट टूगेदर करनी आ उन्हां कोल अपने प्राइवेट बूथ्स हैगे आ और अगर किसी दा बेबी शावर आ और तुसी किसी नु सरप्राइज करना है अपनी वाइफ नु ही तुसी जेंडर रिवील करन चे तुसी आपस च कपल्स ने सारे ने अरेंजमेंट करने हुंदे कई बार रिलेटिव्स करदे जेंडर रिवील चे सो जे तुसी जेंडर रिवील चे भी कोई हेल्प चाहिदी है बहुत वधिया ट्रेन्ड स्टाफ है और सारी जेडी तुहाडी इवेंट नु मैनेज करनगे सो तुसी इन्हां नु कॉल कर सकदे डीजे सिस्टम इन्हां दी डेकोरेशन सारा कुछ इन्हां दा फर्स्ट क्लास हुंदा है इन्हां दे पेज नु जाके तुसी चेक भी कर सकदे हो सो नजारा हैगा एलोकेटेड किथे पंकज जी किथे पहुंचना सारिया ने
1: हां जी पहुंचना है जी 30 रैम्बलर ड्राइव में यूनिट नंबर 1E ये जी स्टील्स एंड कैनेडी का इंटरसेक्शन है और जब आप स्टील से क्वींस पे कह लो या फिर बोवेड की तरफ आप जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको आएगा इलेक्ट्रा का ऑफिस है या फिर हस्की का आगे गैस स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने ये प्लाजा है और वहां पे आप जाओगे तो आप नजारा आप मिस नहीं कर सकते
0: जी और नजारा जिवें दा नाम है नजारा तुसी उत्थे जाओगे वी आर 101% श्योर क्योंकि असी खुद अपनी एक छोटी जी पार्टी उत्थे कीती सी इवेंट कीता सी सो तुसी सारे जाके इंजॉय कर सकते हो और इन्हां दी टीम मेंबर्स तुहाडी जस्ट लाइक अ फैमिली सारे दा टेक केयर करदे आ और इन्हां दे प्राइस ते इन्हां दी क्वालिटी नो भी कोई बीट नहीं कर सकदा
1: हां जी हां जी
0: ते नंबर नोट कर लो तुसी नजारा दी टीम दा 905-451-2600 905-452-2600
1: हाँ जी चलो सर सारे जी वीकेंड आ गया तो पहुंचिए जी नजारा के ऊपर और हम आपको एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं एक ब्रेक और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी हम आप पे शेयर करेंगे तो ये लीजिए जी

0: Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 9054512600.
1: तो संतोष जी ये इतना बढ़िया कमर्शियल है जी, तो नजारे आ गया हुए, तो सारे जी पहुंचिए नजारा पे 30 रेमला ड्राइव पे और जल्दी से अपनी पार्टियां बुक कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर है 9054512600 पे कॉल करके आप अपना इवेंट बुक कीजिए, पार्टीज बुक कीजिए। आपको शाम को डिनर के लिए जाना है, लंच के लिए जाना है, तो इवेंट के लिए जाना है, कुछ भी हो प्री बुक करके जाइए और बढ़िया एम्बियंस का और टॉप खाने का एंजॉय लीजिए।
2: जी बिल्कुल,
1: एंजॉय कीजिए
2: बिल्कुल। सो साडे नाल दे नाल है गया तवा किचन दी टीम, तो साडे नाल है गया दीक्षा जी। दीक्षा जी तुसी ऑन एयर हो?
3: ਸਪੈਸ਼ਲ
2: ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿਚ?
3: ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਚਨਾ ਭਟੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਚਿਕਨ ਲੈਣਾ ਹੈ
2: ਜੀ,
3: ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਬਣਦਾ
2: जी। बहुत वधिया जी। और पंकज जी सानू हुने टेक्स्ट मैसेज भी आई हुई है।
1: हाँ जी, तो चंदपी जी एज यूजुअल केटरिंग्स में बिजी है बिकॉज एक दे आर चैंपियंस इन केटरिंग है जी।
2: हाँ जी।
1: तो चंदपी जी वहाँ पे बिजी है, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था कि जो आज की डील्स है, जो आपको 1299 में स्पेशल डील्स लगी है जी वहाँ पे, दीक्षा जी सारे आज पहुंचने वाले 1299 वाले आपकी डील्स लेने के लिए। दो अमृतसरी कुलचे आपको मिलेंगे जी 1299 में, छोले भटूरे दो प्लेट आपको मिलेंगे जी 1299 में, वेज बिरयानी, नूडल्स, न्यूट्री कुलचा, वड़ा पाव, ये सारी चीजें आपको मिलेगी जी 1299 में। और इनके कुलचे जी इतने बढ़िया है, आप खाओगे तो एक आदमी एक कुलचा खा के रिझ जाएगा। सही है दीक्षा जी? हेलो।
3: हाँ जी।
1: और वीकेंड स्पेशल आप अगर ये सारी डीले लीजिए, और जो परांठे वाली आंटी है उनके जो स्पेशल परांठे है दारा सिंह परांठा, ये भी आपको 1299 में दो मिलेंगे जी। तो इतनी बढ़िया डील्स है, ये रेडियो के लिए स्पेशल डील्स है, जो भी रेडियो सुन के आएगा दीक्षा जी, तो आज उनको ये डील्स आप देंगे। सो जी ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
2: जी। बिल्कुल।
1: हाँ जी।
2: सो 1299 दे दो दो डील्स है कॉम्बो आ। सो तुसी आज सारे जाने किचन कर लो बंद, ते रसोई पहुंचो, साडी रसोई केड़ी रसोई से तवा किचन
1: थी।
2: एंड बहुत ही फ्रेश फूड हुंदा है इन्हां दा। सो असी हमेशा वीकेंड ते इत्थे जांदे और तुहानू इन्हां दा फूड खा के लगेगा नहीं कि तुसी बाहरों कुछ खा के आए या तुहानू हैवीनेस हो रही है। सो डील्स भी बहुत वधिया है। सो सारे ने पहुंचना है तवा किचन।
1: तवा किचन आप पहुंचोगे जी 50 सनीवेल गेट पे, ये जी बोवियर्ड एंड एयरपोर्ट का इंटरसेक्शन है या फिर माउंटेनिश एंड बोवियर्ड का इंटरसेक्शन है, वहां पे पहुंचिए। और उसका नंबर है जी 9057901699 पे आप उनको कॉल कीजिए और जल्दी से अपने ऑर्डर्स बुक कीजिए। और जो भी इनका टेस्टी खाना है, ये आई थिंक इनका स्लोगन है संतोष जी, प्रिपरेशन घर वर्गी और टेस्ट ढाबे वर्गा।
2: बिल्कुल। सो जे तुसी इंडिया दे टेस्ट नु मिस कर रहे हो, सो एक बारी तवा किचन जाओ और इन्ना दे जेड़ी हैगी खन्ने वाली टिक्की।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: बहुत ही स्वाद है। और इन्ना दी एक रबड़ी हुंदी है, जदों असी इंडिया च घूमन जांदे हुंदे
1: सी
2: रस्ते दे विच मैकलॉडगंज जांदे सी, रस्ते दे विच बॉम्बे पिकनिक स्पॉट आंदा सी, मेरा फेवरेट, उत्थे असी रुक के रबड़ी वाली जेड़े फलूदा खांदे हुंदे सीगे और रबड़ी वाली खीर भी हुंदी सीगी और फलूदा, सेम ओही टेस्ट तुहानू तवा किचन ते मिलेगा। इन्हां दे पहाड़गंज वाले छोले भटूरे, ओ माई गॉड, न्यूट्री कुलचा तुसी खा के देखे चौड़े बाजार वाला। तुसी इंडिया नू जे तुसी मिस कर रहे हो ना, एक बार तुसी तवा किचन जाओ, पैसे भी बचणगे और तुहानू क्वालिटी दा मजा भी आ जाएगा।
1: हाँ जी, जी।
2: बिल्कुल।
3: अज साडी अज एक स्पेशल डील लगी हुई है जो है कि मैंगो शेक ते 699 दा ओनली मैंगो शेक तुहानू मिलूगा, ड्राई फ्रूट ते आइसक्रीम दे नाल।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया डील है। आई थिंक दीक्षा जी, सॉरी मैं वो टेक्स्ट मैसेज मैंने अभी जस्ट देखा, लास्ट में एक डील लिखी थी ये भी चंदपी जी ने। आई थिंक आप जो कैन वाला आप नहीं यूज करोगे, राइट? जो कैन का मैंगो नहीं यूज करोगे, फ्रेश मैंगो से बनाया जाएगा
2: जी।
1: और जैसे आप ऑर्डर करोगे आपके एकदम फ्रेश बना के आपको फ्रेश मिलेगा और उसके टॉपिंग्स आप आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट्स डाल के मिलेंगे, राइट?
3: हाँ जी, आइसक्रीम एंड ड्राई फ्रूट।
1: तो जी समर का इससे अच्छा आप क्या बोलते हैं कि एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं आएगा, आपको एकदम फ्रेश मिलेगा और ऑन द स्पॉट आपके लिए बनाया जाएगा। सो दीक्षा जी थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी द डील अगेन। तो 699 में आपको मैंगो मिल्क शेक मिलेगा विद आइसक्रीम एंड ड्राई फ्रूट
2: या और फ्रेश मैंगोस।
1: हाँ जी दीक्षा,
3: फ्रेश मैंगो, और वो भी ऐसे नहीं है कि आपको बिल्कुल पतला मिलेगा, पूरा जो हमारा इंडिया वाला टेस्ट जो गाढ़ा गाढ़ा मेंबरशिप होता है वही मिलेगा।
2: वाओ वेरी नाइस। सो सारे ने पहुंचना है जल्दी जल्दी तवा किचन, बट इन्हों थोड़ा जा टाइम दिया करो इमीडिएटली उस टाइम जो तुसी कोई फ्रेश चीज लेनी है तो तुहानू थोड़ा जा वेट करना पै सकता है, 20-25 मिनट की वेटिंग लैके चलो। सो तुसी सारे पहुंचो तवा किचन 50 सनीवेल गेट ते साडा शो सुनते रहो। होर भी बहुत सोहनिया सोहनिया डील सारिया है, सिर्फ खान पीन दे नाल होर भी सोहनिया सोहनिया डील सारिया
1: साडे। हां जी दीक्षा जी, आप हम आपको फिर से कॉल करेंगे, हम अपने परांठे वाली आंटी से बात करेंगे और फिर से आपके साथ जुड़ते हैं जी।
3: ओके
1: ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। और एक छोटा सा मैसेज हम देते हैं जी तवा किचन की तरफ से,
4: डिलीवर कर दें कस्टमर्स नु ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
5: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, मैं तवा किचन तो कैटरिंग करवाई सी, सच मनो स्वाद ही आ गया गरम गरम फ्रेश फूड। अगर तुसी भी कैटरिंग करवानी है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी तवा किचन नू, इना दी सर्विस एक्सीलेंट है, ताई ताई कहंदे ने टेस्ट ढाबे वर्गा ते प्रेपरेशन घर वर्गे।
6: 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Mountnesh and Boveda intersection, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699
4: TAWA Kitchen.ca। जदों असी फूड डिलीवर करदे हां कस्टमर्स नूं तां उनां दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।

0: 1699।
1: तो जी कोई भी केटरिंग करवानी होती है, टॉप का खाना मिलेगा आपको, प्रॉपर बना हुआ, टेस्ट ढाबे वर्गा, प्रिपरेशन घर वर्गी। तो पहुंचे तवा किचन 905-790-1699। संतोष जी क्या हो गया, थोड़े आज थोड़े काम हंस रहे हो आप जी, क्या हुआ?
2: या मैं हंस रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत हादसे जी वाला एक क्वेश्चन है।
1: ओके जी।
2: सो मेनू किसी ने पूछा बट मेनू आंसर नहीं आ रहा, बट मैं वैसे ही हंसी जा रही हूँ।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: और मैं सोचा चलो कि असि अपने रेडियो फैमिली नु पूछ लिए कि जे कोई मेनू एदा आंसर दवे ते मैं अगे भेजा।
1: हाँ जी।
2: सो मेनू क्वेश्चन हैगा है मेरा,
1: तो संतोष जी के पिटारे से कुछ निकल रहा है। हाँ जी।
2: ओ क्वेश्चन हैगा है कि ओ केड़ा लैंड आ जिथे सानू गाना गाना मना है।
1: गाना गाना मना है
2: या वो कौन सी लैंड है जहां हमें गाना गाना मना है? सो तुसी भी सारे सुन रहे हो साडा शो, सो तुसी सानू कॉल करके दसो ते कित्थों केड़ी लैंड च तुसी गाना नहीं गा सकदे, कौन सा लैंड जिथे तुसी गाना नहीं गा सकदे। सो साडे कोई भी विनर्स जो भी आंसर देंगे, स्टार्टिंग फर्स्ट टू कॉलर्स नो असी दे रहे हैं तवा किचन वालों। सो की दिता जाए पंकज जी, असी तवा किचन नो दस दवांगे फिर
1: आज जी, जो भी आज जाएंगे
2: चलो जी। सो स्टार्टिंग टू जेडे भी साडे दो कॉलर्स होंगे रैंडम असी चकांगे उन्हां दे नाम। सो तुसी सारे ने तवा किचन च फिर पहुंचना, असी तुहानू दसांगे नाम उन्हां दे। सो मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रही हां मैं, ओ केड़ा लैंड है जिथे तुसी गाना नहीं गा सकते, गाना गाना मना है।
1: गाना गाना मना है
2: या सो तुसी आंसर कित्थे देने है, तुसी साडे स्टूडियो दे नंबर ते कॉल करना है। सो साडे स्टूडियो दा नंबर हैगा 905-673-3337 905-673-3337 ते कॉल करके दसो केड़ा लैंड है जिथे गाना गाना मना है।
1: लेकिन संतोष जी ऐसे कैसे हो सकता है?
2: हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है।
1: तो क्रिएटिविटी सुनी जाए
2: जी, लेट्स सी कि सारियां दा आंसर की हुंदा है। सो तुसी सानू कॉल करनी है और दसना है सानू केड़ा लैंड है जिथे गाना गाना मना है।
1: ओके जी, तो आंसर्स क्रिएटिव होने चाहिए, थॉटफुल होने चाहिए,
2: कुछ भी हो।
1: और पहले दो कॉलर्स जो करेंगे उन कॉलर्स आएंगे या फिर राइट आंसर आएगा संतोष जी?
2: कुछ भी ये कोई कंपटीशन नहीं हैगा।
1: ओके जी,
2: तो बिल्कुल,
1: तो उनको मिलेगा जी तवा किचन की तरफ से लुधियाने वाला न्यूट्री कुलचा, बिल्कुल आज ये फ्री मिलेगा। तो जल्दी कॉल कीजिए जी, स्टूडियो के नंबर है 905-673-3337 पे आप कॉल कीजिए और हमें बताइए कि क्या है वो चीज। संतोष जी चलिए जी अपने पहले कॉलर।
2: हेलो प्रदीप जी, तुसी ऑन एयर हो?
3: हाँ जी, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग जी।
3: हाँ जी, मैं थोड़ा सुनता सीगा जी रेडियो ते तुसी क्वेश्चन पाया सीगा भी केड़ा लैंड है जिथे गाना गाना मना है
2: जी।
1: हाँ जी,
2: आंसर हैगा आ। सो तुसी सुनदे रहो साडा शो, 1 बजे तक असी नाम अनाउंस करांगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी।
1: सो नेक्स्ट कॉलर है जी 8777।
4: ओके okay,
2: हाँ जी,
4: हाँ जी, मैं क्या की हाल चाल साहब? ठीक ठाक।
2: चढ़दी कला जी, तुसी किवें हो?
4: हाँ जी वधिया वधिया जी। चंद्रमा दे उत्ते तुसी गाना नहीं गा सकदे।
1: चंद्रमा के उत्ते
2: मैं गाना बोलिया सी का वैसे,
4: ते गाना ही मैं कहने, मैं खाना तो नहीं किया।
2: अच्छा जी, तुहाडा नाम की है?
4: गुरदेव सिंह।
2: ओके गुरदेव जी,
4: चंद्रमा दे उत्ते गाना नहीं गा सकदे उत्ते जी।
2: अच्छा जी, वेरी नाइस। सो लेट्स सी, गुरदेव जी शो सुनदे रहो 1 बजे तक, थैंक यू सो मच कॉल करन लई।
1: संतोष जी सोचने वाली बात है संतोष जी।
2: हाँ जी बिल्कुल, मेनू आप नू आंसर नहीं पता पंकज जी, ताही मैं सारा ध्यान ले रही हूँ।
1: ठीक है ठीक है ठीक है जी।

0: बहुत फेवरेट सॉन्ग सी हाँ जी मेरा तो बहुत फेवरेट या सो पता नहीं
1: मैं एक सीक्रेट बात बताऊं जो भी मतलब मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी आते हैं सारे मतलब हिंदी मूवीज देख देख के सुनी आती है
0: जी बिल्कुल
1: बिकॉज उसमें गाने आते हैं गाने पंजाबी गाने आते हैं तो उसमें से काफी सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। चलिए जी संतोष जी मैं आपके सवाल के बारे में सोच रहा था तो मैं मुझे आंसर देने का अलाउड है
0: हाँ जी पक्का बट आपका नाम नहीं आएगा लिस्ट में
1: फिर से मैं हमेशा वही सोचता हूँ मैं नीचे जाके कॉल करूंगा बोला मैं एक्स वाई जेड बोल रहा हूँ मेरा ये आंसर
0: है।
1: ओके संतोष जी मैं कहता कि मैं वॉशरूम
0: हाँ सारे जाने सुन रहे हो पंकज जी नो पता नहीं की हो गया सवेरे सवेरे अगे अमन जी मेनू कहंदे हुंदे सी कि संतोष नु कुछ होया बट आई थिंक अज पंकज जी नु कुछ हो गया वॉशरूम च कहंदे गाना गाना मना है वॉशरूम ते एक इदां दी जगह जिथे मेनू लगदा मैक्सिमम 70-80% लोकी गाना गाउंदे आ जाके पंकज जी आप
1: मैं कह रहा हूं नहाते टाइम पानी मुंह में चला जाएगा किसी ना गाना गाओगे
0: पानी है वो जहर थोड़ी ना है पंकज जी पंकज जी नु कुछ हो गया है सो तुसी कॉल करके दसो पंकज जी दा आंसर कितने भी तानू 1% भी सही लग रहा है सो तुसी कॉल करनी है सानू साडे स्टूडियो दे नंबर ते ते नंबर हैगा बड़ा इजी जिया 905-673-3337 905-673-3337
1: चलो जी बढ़िया है जी तो मेरा आंसर तो देखते क्या कहते हैं चलो
0: जी बिल्कुल सो साडे नाल कॉलर है गया साडे 1710 तुसी ऑन एयर हो हेलो हेलो जी लास्ट ते तोड़ा नंबर है 1710 तुसी ऑन एयर हो
2: ज्योति फ्रॉम ग्रीन वैली गार्डन
0: ओ वाओ ज्योति जी आ गए हैं ज्योति जी जब आते हैं तो हरियाली साथ में लाते हैं
1: हाँ जी
0: ज्योति जी ग्रीन वैली गार्डन सेंटर तो है गया और पंकज जी मैं ना दे लोकेशन ते गई जे तुसी किते भी घूमना फिरना भी है ना ते तुसी ग्रीन वैली गार्डन सेंटर पहुंच जाओ और इन्निया वधिया वधिया इन्ना कोलो पनीरिया हैगिया इन्ने वधिया वधिया इन्ना कोल प्लांट्स हैगिया इवन तुसी ट्री भी ले सकदे हो जे तुसी आपदे घर दे बाहर लगाना सो ज्योति जी अज दसो तुसी क्या स्पेशल लेके आए हो अज और ये सीजन चल रहा है आजकल तो हमारा कि हम फटाफट अपनी ग्रीनरी का जो स्टॉक है वो ज्यादा कर ले अपने बैक यार्ड को शाइन करें।
2: हाँ जी हाँ जी आज हमारे सारे जो पेरिनियल प्लांट है ट्रीज है
0: जी
2: इनको सबके ऊपर 25% ऑफ है जो अगर ये प्लांट सारे जो एवरी ईयर आने वाले हैं हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है फ्लावर से लेके फ्रेग्रेंट फ्लावर से लेके फल के ट्रीज शैडो वाले ट्रीज सबके ऊपर 25% लगा हुआ है और ये डील लाइक यू नो ग्रैब करो सब लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगी इट्स अमेजिंग वैरायटी
0: वाओ और पंक क्या कहते हैं ज्योति जी मैं भी आपके पास से लेके गई थी और मेरी तो हरी मिर्चें इतनी अच्छी तरीके से चमकदार आ गई और इतना इंडिया वाला सारा टेस्ट इंडिया वाला है अमन जी का बैक यार्ड भी जगमगा गया उन्होंने मुझसे फोटो शेयर की थी आपने उनको कुछ फ्लावर्स दिए थे उनके फ्रंट यार्ड को डेकोरेट करने के लिए अभी वो है आपके पास स्टॉक में
2: हाँ जी कल ही रिस्टॉक हुए सारे फ्लावर्स ये सेल के लिए हम लोगों ने और ज्यादा रिस्टॉक किया कि जितने हो सके वो लोग सब आए लेके जाए हर साल आने वाले प्लांट जो इतने सारे फ्लावर्स देंगे और गाइडेंस चाहिए तो वो तो फ्री में मिल ही रहा है कि कौन से प्लांट कहाँ लगाने हैं सन में लगा सकते हो या नहीं पार्शियल सन में लगा सकते हो या शैडो में लगा सकते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल्स मैं आपको जो भी आएगा मैं उनके साथ शेयर करूंगी उनको गाइडेंस करूंगी
0: और सब तो वधिया पंकज जी इन्हां दी गल हैगी कि गुरुदेव जी हैगे इन्हां दे जिहड़े लीडर सो इन्हां कोल जाओगे ना तुसी मतलब मेनू पहला शौक सीगा गार्डनिंग दा बट मेनू नॉलेज नहीं सी कि करना किवें ते लोकां दे बैकयार्ड देख के मैं खुश हुंदी रहिंदी सी और सोचदी सी आई विश मैं भी कर सका लेकिन इन्हां कोल जाके ज्योति जी बहुत सोहना एक्सप्लेन कर दिया कि तुसी किवें लगा सकदे हो किवें की तुसी सोचना है लगाउण दे टाइम क्योंकि मेरे पहला मर जांदे सी बूटे लगाए
1: हुए
0: या सो इन्हां दीआं जिहड़ीआं ट्रेज भी है ना बहुत वड्डीआं है अगर तुसी बाकी स्टोर्स दे नाल कंपेयर करोगे 16 acres दा जिहड़ा लैंड आ तुसी वैसे ही जाना जिवें मैनूं फोटोआं
1: ज्योति जी से भी बात करी है
0: तो
1: मतलब ये इतना मतलब ये पर्सनल जो कंसल्टेशन होता है ना कि क्या करना है आपने सही कहा कि काफी सारा एक इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन ये छोटी छोटी चीजें है ना ज्योति जी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है तो ये फिर जब आप राइट तरीके से लगाओगे और प्रॉपरली पानी दोगे क्या मतलब उसको जो खाद देते हैं तो उसके ना इट ग्रोस प्रॉपरली अच्छे तरीके से होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सच में बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी है, बहुत सारी वैरायटीज है, मतलब इतनी वैरायटी मैं ही देख के हैरान हो गया
0: जी,
1: इतनी सारी वैरायटी है।
0: सो बहुत ही वधिया हैगा है, और टेस्ट जो है ना पंकज जी सेम लाइक इंडिया है, इन्हां दी सब्जियां जो ना तुसीं उगाईयां होईयां, करेले करेले भी उगे होए साडे, सो सेम मेरी मम्मी खा के कहंदे सीगे कि आहा सेम लाइक इंडिया है, नहीं तो इत्थे सानूं ओह उंज दा टेस्ट नहीं मिलदा, प्लस इन्हां दे जे फ्लावर्स या ओह रेड रोजेस तो इन्नी सोहनी खुशबू इंडिया वाली। सो यही सीजन चल रहा है, तुसीं आपदे बैकयार्ड नूं हरा भरा करो, और कहते हैं ना कि जब स्ट्रेस होती है ना तो आंखों को ना जो सुकून मिलता है वो ग्रीनरी से मिलता है।
1: हाँ जी, करेक्ट।
0: तो सारे जाने उत्थे पहुंचो, तुहानूं खुद ना खुद तुहानूं देख के तुहाडी फीलिंग आएगी कि तुसीं कुछ ना कुछ लैके जाओ। सो सारे ने कित्थे पहुंचना है, ग्रीन वैली गार्डन सेंटर, इन्हां दीआं दो लोकेशन्स हैगीआं। सो इह दोनों लोकेशन ग्रीन वैली सुपर मार्केट वालिआं दी हैगी। सो जिहड़ी फर्स्ट लोकेशन हैगी आ उह हैगी मैकवीन ड्राइव ते, सो मैकवीन ड्राइव ते मेफील्ड दी इंटरसैक्शन ते, सो नंबर हैगा 11665 मैकवीन ड्राइव, ते दूसरी लोकेशन हैगी इन्हां दी हैरिटेज रोड लागे। सो जदों तुसीं अमेजॉन दी बिल्डिंग लागे जाओगे उत्थे वेयर हाउस हैगा आ, उत्थे ही आ। जदों तुसीं घूमन भी जा रहे हो, जे कोई आ शॉपिंग करन जा रहे हो तुसीं, टोरोंटो प्रीमियम आउटलेट उस तो पहला ही आंदा है, क्योंकि मैं जिस दिन घूमन गई सी उस दिन मैं इत्थे गई सी। सो एड्रेस हैगा 2547 एम्बल्टन रोड ब्रैम्पटन, ते नंबर हैगा इन्हां दा 6472225601 6472225601, हैरिटेज रोड ते एम्बल्टन दी इंटरसैक्शन ते। नाम लो ते तुहानू सारियां सब्जियां दीआं पनीरियां मिलनगीआं। जे किसी ने कोई प्लांट्स वगैरह भी लगाने, बूटे भी वड्डे लगाने, ट्रीज लगाने, सारे लई इक्को इक जगह है ग्रीन वैली गार्डन सेंटर। सो थैंक यू सो मच ज्योति जी, सारे पहुंच रहे हैं, सारे रेडियो आवाज का नाम लेके जायो, और तुहानूं कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा ग्रीन वैली गार्डन सेंटर तो।
2: हाँ जी, हाँ जी, और एक लास्ट बात बतानी थी कि हमारे पास ऐसे भी प्लांट्स आए हुए हैं जिससे मस्कीटो रिपेलेंट होते हैं।
0: ओह वाओ,
2: तो वो मस्कीटो के स्प्रे मारने की जरूरत नहीं है। जो प्लांट्स आप आपके डेक के आजू बाजू में लगा दो या सिटिंग एरिया के बाजू में लगा दो तो मस्कीटो कम हो जाएंगे।
0: वेरी नाइस। तो मुझे बताओ कि ज्योति जी, ये कोई प्लांट ऑलरेडी है या ये उसको कुछ टाइम लगेगा प्लांट को दोबारा से ग्रो करने में?
2: नहीं, ये ऑलरेडी बड़े हुए हुए प्लांट्स है और ये पेरिनियल है इसको।
0: अच्छा जी, वेरी नाइस। सो जी, तुसी कितने को मन जा रहे हो बीच साइड ते, कितने भी तुसी जा रहे हो जिथे बहुत ज्यादा मॉस्किटोज हैगे आ, ते तुसी इना दा प्लांट भी अपने नाल लेके जा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि रिसेंटली हम गए थे कहीं घूमने के लिए तो असि बार बार मच्छरों तो ही डरी जा रहे थे। सो वधिया, तुसी केमिकल्स भी अपने बॉडी ते ना लगाओ, तुसी लग गया प्लांट रख लो। वाओ, वेरी नाइस। सो ये एक प्लांट ज्योति जी मैं लेके जाऊंगी, एक तो ज्यादा ही लेके जावांगे असीं। सो सारे ने पहुंचना है ग्रीन वैली गार्डन सेंटर, और ये प्लांट से जरूर पिक करो बच्चों के नाल या अपनी फैमिली नाल, कितने भी घूमन जा रहे हो ये तो मस्ट है, नाल लेके जाए।
1: हाँ
0: जी, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच ज्योति जी, असीं फिर मिलते हैं।
2: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: सो साढ़े नाल हैगे आ हुण चरणजीत जी, तुसीं ऑन एयर हो।
3: हां जी,
0: सत श्री अकाल जी।
3: ओ शमशान घाट जी गाने नहीं गा सकते?
0: हाँ जी। ओ माय गॉड, मैं तो डर ही गई। चरणजीत जी, मैं सीरियसली डर गई कि शमशान घाट बोल के की बोल रहे हैं। ओके, सो चलो जी, तो आंसर भी ऐसी नोट कर लेंगे। चरणजीत जी, कॉल करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ओके जी,
0: मैं सीरियसली पंकज जी डर गई जी तो शमशान घाट गया, मैं बैठे बैठे खड़ी हो गई कि हो गया, असि शायद कुछ गलत नहीं बोल दिता, मैंने ऐसा लगा।
1: करेक्ट, करेक्ट जी।
0: सो
1: काफी क्रिएटिव आंसर से जी।
0: जी जी बिल्कुल, बस सानू अज तीन जाने ने जवाब दिते, साडी महिला समिति कहां गई,
1: कहां गए,
0: आज हमें आंसर मोस्टली मेल से आ रहे हैं, तो आज जागो सारे जाने और कॉल करके दसो। बहुत सिंपल जा क्वेश्चन हैगा, एदा दा केड़ा लैंड आ जिथे तुसी गाना नहीं गा सकते, मतलब एक छोटा जा क्वेश्चन पुछिया, फटाफट फोन ने चाहिए आ, और साडे नाल हुण देखो गल कर रहे हैं अखां दी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: सो अखां दी संभाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अखां नाल ही सानू दुनिया सोहनी लगदी आ।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: सो कई बार सानू बोलन दी जरूरत भी नहीं पैंदी, असीं अखां तों ही गल्लां समझा देईदी आ। सो साडे नाल स्पेक्स एक्सप्रेस तों हैगे ने परमवीर जी, तुसीं ऑन एयर हो।
4: बहुत बहुत धन्यवाद जी, सारे श्रोतां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। सो जिहड़े साडे श्रोते अज अखां दा चेकअप करवाउणा चाहुंदे ने, ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਅੱਜ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਆਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਸੀਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਟਨਾ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਟਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਟਨਾ ਦੀ ਇਮੇਜਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-460-8888 905-460-8888। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਫਰੇਮ ਹੋਣ, ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ 2026 ਦੀ ਸਮਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਤੇ ਫਰੇਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਚੀ ਦੇ ਫਰੇਮ, ਪਰਾਡਾ ਦੇ, ਟਿਫਨੀ ਦੇ, ਡੋਲਚੀ ਗਬਾਨਾ ਦੇ, ਟੋਮ ਫੋਰਡ ਦੇ, ਵਰਸਾਚੀ ਦੇ, ਬਰਬਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਫਰੇਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲੈਟ 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਵਨ ਦੇ ਫਰੇਮ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਰਮਾਨੀ ਦੇ ਫਰੇਮ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟੋਨ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕੋਚ ਦੇ ਫਰੇਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਟੋਰੀ ਬਰਡਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਫਲੈਟ 50% ਆਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਸੇਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਮੀ ਹਿਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਫਰੇਮ, ਕੈਲਵਿਨ ਕਲਾਈਨ ਦੇ ਫਰੇਮ, ਫੈਂਡੀ ਦੇ ਫਰੇਮ ਤੇ ਵੈਲੈਂਟੀਨੋ ਦੇ ਫਰੇਮ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਟ 75% ਆਫ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸੇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਡੀਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ? ਸਪੈਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 410 ਐਂਡ ਸਟੀਲਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀ ਐਂਡ ਸਟੀਲਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਗਲਾਸਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਨਗਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜੀ, 905-460-8888 905-460-8888। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸਪੈਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਅਮਨ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਪੰਕਜ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਚੈੱਕ, ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਨੰਬਰ 1। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ।
4: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ ਸਪੈਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, 35 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 410 ਐਂਡ ਸੀਲਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀ ਐਂਡ ਸੀਲਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 905-460-8888 905-460-8888।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
4: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸੈਟਰਡੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਤੌਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜਸ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਤੌਰਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਤੌਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਸੋ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, NAZARA, ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ, 905-673-3337 905-673-3337। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਕਾਲ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਨਾਲ।

0: पिटारे से क्वेश्चंस आते हैं उसके भी अपने बढ़िया बढ़िया आंसर्स आ रहे
1: बट
0: हैं।
1: आंसर बड़े सोने सोने आए
0: हाँ
1: है ना।
0: हाँ जी, वो एक जो आंसर था तो मैं अपने डरावना आंसर था।
1: हाँ सीरियसली शमशान घाट वाला। मैं तो डरी गई थी सीरियसली। सो पंकज जी,
0: हाँ जी,
1: अब हम लगा रहे हैं प्यारा सा

बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर, जुत्ती ते सारे तारे की सारे अंबरां दे विचों जिन्ने भी प्लैनेट्स ने वो भी लाके ला दियो जरूर। प्यार मोहब्बत दे विच बंदा की कुछ नहीं कर सकदा है ना। जिवें प्यार मोहब्बत दियां तंदां जिहड़ियां थोड़े नाल जुड़ियां होईयां ने ओ दिन ब दिन जदों मजबूत हुंदियां ने ते सानूं वी खिच पैंदी है कि असीं वी मुड़ के थोड़े कोल जाइए ते थोड़े लई कुछ ना कुछ नवेकला लैके आईए। बिल्कुल अज लाइव ऑन लोकेशन साडी टीम पहुंची हुई है जी, सिद्धू साहब खुद पहुंचे हुए ने ग्रांड होम फर्नीचर ते। लोकेशन है 6685 टॉमकिन रोड, उत्थे पहुंचो जी। ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड सेल लगी हुई है, काफ़ी सारी बचत की जा सकती है। लाइव ऑन लोकेशन का फायदा यह होंगे कि पॉपअप लोकेशन जिहड़ियां इह होंदियां ने टाइम बीइंग वास्ते इह जिहड़ियां सेलां लगदियां ने उसका फायदा यही है कि कुछ चंद पैसे जिहड़े ने बच सकते हैं, उहदे नाल फ्री गिफ्ट जिहड़े ने ज़्यादा मिल जाते हैं। सो जाके अज का दिन वधिया है जी, जिवें सिद्धू साहब दस रहे कि तुसीं पिकनिक वास्ते तैयारी खिंची हुई है तो जाते लंघते बढ़ते उधरले पासे गेड़ा जरूर लगा के आयो, की पता पसंद आ जाता है कुछ तो उस गिफ्ट जिहड़े ने वाह कमाल थानू मिल सकते हैं जी। सो अपना लक जिहड़ा है आजमाया जा सकता है अज ग्रैंड फर्नीचर की इस सेल से। अगला नंबर थानू देन जा रही हूँ जी मनु शर्मा होना का, कि थानू पता है कि ओंटारियो दे विच

0: वैसे ये भंगड़ा बीट वाले गाने दा ना स्वाद अपना ही है जिन्ना मर्जी तुसी कोई होर गाना ला लो जदों एक ऐसे गाने वजदे ने तां मल्लो मल्ली यू नो थोड़ा जा खून जिहड़ा है थोड़ा जा डबल रफ्तार दे नाल चलना शुरू हो जांदा दौड़ना शुरू हो जांदा डू यू एग्री एग्री करदे हो मैनूं लगदा है ना सतनाम जी सत श्री अकाल स्वागत की हाल चाल हां जी हां जी हेलो आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी फिर दोबारा मिलायो ठीक है जी सतनाम जी की आवाज जी है मेरे तक तो पहुंची थी थोड़े तक पहुंची फिलहाल 905-564-444 प्रमोद जी फिर दोबारा कॉल कर लियो मेनू इंतजार रहेगा थोड़ी कॉल का गिल स्वीट फैक्ट्री प्योर वेजिटेरियन लाइव केटरिंग फॉर एनी ओकेजन मशीन मेड समोसे अवेलेबल ने हुन सो ऑल स्वीट्स जिहड़े ने कैनेडा दे विच जिन्ने भी थानू स्वीट्स दी थोड़ी जी यू नो क्रेविंग हो रही है वो थानू मिल सकते ने लाइव फूड ट्रक केटरिंग सारी ही ओकेजनस वास्ते 6 लोकेशनस तो थानू सर्व कर रहे ने 2 इन्हां दीआं लोकेशनस कैलगरी दे विच ने 5 चलो फ्रैशको दे विच ने सो इन्हां दे तुसी जदों चलो फ्रैशको दे विच शॉपिंग करदे करदे भुख लगी आई तां फिर गिल्स स्वीट फैक्ट्री ते इक गेड़ा की लाणा उत्थों लंघोगे तुसी तुहाडे अपने आप ही दिल मल्लो मल्ली करेगा कि हुण समोसे भी पैक करा लिए हुण मना ए वी कर लिए हैड ऑफिस फोन नंबर नोट कर लो तुसी तां कि तुसी लाइव केटरिंग वास्ते ऑर्डर करना होवे तां नंबर थोड़े कोल होवे 905-799-2616 नंबर है जी गिल स्वीट फैक्ट्री वाले का 2131 विलियम्स पार्कवे यूनिट नंबर 3 ब्रैम्पटन विखे लोकेशन है जी तो इस लोकेशन से जाके तुसी ऑर्डर कर सकते हो तो अपनी जी केटरिंग करानी है वो वधिया वधिया करवाई जा सकती है हेलो जी सत श्री अकाल 1695 बिल्कुल ठीक ठाक तुसी सुनाओ किधर दी तैयारी
1: टाइम बदले मैं तो रात 9 बजे संडे नु इंतजार करता हूं
0: आए हाय बिल्कुल ठीक ठाक है बिल्कुल ठीक ठाक तुसी सुनाओ
1: मुमकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन होवे ना ते नूर जाना जाना एक ही है चांदनी राते सब जब सोए
0: चांदनी राते
1: अच्छा ये पता की पिछले साल सेंचुरी ऑफ द सॉन्ग सी पाकिस्तानी अपना फिल्म विच
0: खिड़दा जा रहा है देखिया कि ड्राइवेज क्लीन हो रहे ने सारे काम चेते आ रहे ने कि कोई भी काम कराना है तो मौसम जो अच्छा धुप्पां शुप्पां लग जान वधिया तो फिर सिटी परमिट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਓਮਕਾਰ ਹੋਮਸ ਪੌਲ ਗਰੇਵਾਲ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਡਰੋਇੰਗਸ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਓਵਰ 20 ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟਸ ਇਨ 2025 ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸਟਮ ਹੋਮਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜੋਬਸ ਆਫਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਹੋਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ $5,000 ਤੇ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਬੁੱਕ ਯੋਰ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟ ਇਨ ਦ ਮੰਥ ਆਫ वैसे हुण पुछो इन द मंथ ऑफ केड़े क्योंकि ये मई का लिखा हुआ है पर आई एम श्योर कि हुण भी कंटिन्यू कर रहे होंगे इस ऑफर के नाल 416-817-3600 नंबर तुसी फिर दोबारा नोट करो 416-817-3600 नंबर है जी ओंकार होम्स तो पॉल ग्रेवाल होरां दा जरूर कॉल करके इन्हां तो वधेरे जानकारी लेती जा सकती है अच्छा जी कैनेडा डे सेल कैनेडा डे बहुत अहमियत रखता है साढ़े वास्ते जिन्हें भी असी कनेडियंस हैं साढ़े वास्ते ब्रैम्पटन जिहड़ा है वो लैके आया जी कैनेडा डे की सैलीब्रेशन चिंगूजी पार्क दे विच सो सैलीब्रेट करो कैनेडा डे इन ब्रैम्पटन विद कंट्री स्टार ली ब्राइस कंट्री बैंड इमरसन ड्राइव चिंगूजी पार्क से लाइव कंट्री म्यूजिक होएगा फैमिली फ्रेंडली प्रोग्रामिंग होएगी चिंगूजी पार्क दे विच July 1st जिहड़ा इंजॉयमेंट की जा सकती है सिक्योरिटी मेजर्स ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੈਮਟਨਸ ਐਨੂਅਲ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੰਗੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਸਡੇ July 1st ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਟੁਗੈਦਰ ਵੀਲ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਡੇ ਆਫ ਲਾਈਵ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਫੈਮਲੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫੂਡ ਫਾਇਰਵਰਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਲੇਕਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਟੋਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ सो 12 बजे तो लेके राती 10 बजे तक, सो दोपहरे 12 बजे तो लेके राती 10 बजे तक जड़ी है एंटरटेनमेंट रहेगा एंड एक्टिविटीज होनगियां, फूड दे ट्रक्स लगे होंगे, फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज होनगियां, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स अपने बच्चों नु नाल लेके जाओ, बिकॉज नाउ होन तो उन्होंने विच एनर्जी जी डबल ट्रिपल होएगी क्योंकि छुट्टियां हो चुकी ने, इट्स एन ऑफ फॉर दैम फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, सो एंजॉय कराओ उन्होंने ऐसी थावां ते लैके जाके उन्होंने एनर्जी जी थोड़ी जी आप बर्न आउट कर सकते हैं ताकि वह थोड़ा जा थक जाए नहीं तो यह थकनगे नहीं। सो चंगोजी पार्क 9050 ब्रमली रोड ब्रैम्पटन विखे लोकेटेड है। सो जुलाई 1st कैनेडा डे सेल दे नाल नाल जिथे जिथे सेल्स लगिया ने उतो फायदा उठाओ ते नाल दी नाल सैलीब्रेशन भी करो। फिलहाल असी दस दिए कि कैनेडा डे सेल दी जिहड़ी है शुरुआत जी है की है कैनेडा सेल डे सेल दी ग्रैंड होम फर्नीचर ने। सो 6685 टोंकन रोड मिसिसागा डेरी ते टोंकन दा इंटरसेक्शन है जी, इतने लगी हुई है कैनेडा डे सेल। सो बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर कैनेडा डे असी उड़ीकते हैं जी कि सेल लगे कुछ ना कुछ बचत होए साड़ी, इन्हों दिन की सानू उड़ीक बहुत ज़्यादा रहती है। सो आ गया जी वो दिन डिजाइनर फर्नीचर लोएसट प्राइसिस से फ्री अपलायंसिस नाल दिते जा रहे हैं एज गिफ्ट। माइक्रोवेव अनाउंस होया सी हुणे एंड पहला भी बहुत सारे ऑफर्स जिहड़े ने दे चुके ने पिछले लिंक दे विच, तो हुण छेती छेती फिर दोबारा एक लिंक लवेंगे तो छेती छेती असी अपलायंसिस बारे जानकारी लवेंगे कि किहड़े किहड़े अपलायंसिस नाल फ्री मिल सकते हैं। देखो जी सोफा सैट लैना होवे तुसी, कोई डाइनिंग सैट लेना होवे या तुसी बेड सैट देख रहे हो वधिया कोई जिदे विच लाइटा शाइटा लगिया होन, बॉक्स वाले जिहड़े बैड ने उन्हां दे उत्ते ऑफर असी लभदे हुंदे आ क्योंकि सानू चाहीदी हुंदी है स्टोरेज। सो जानांगे कि ग्रैंड होम फर्नीचर ते किहड़े किहड़े फर्नीचर आइटम्स ते सेल लगी हुई है। 6472620000 6472620000 नंबर है जी। जे तुसी हुण ये सुन रहे हो इस बार इस सेल बारे ते हुण तुसी कह रहे हो कि हो मेरा तो काम होएगा ये तो सेल मुक जानी है, तो कॉल कर लो ते कॉल करके अपना नंबर जिहड़ा है लिखवा दो ताकि थोनू ये सेल दे बेनीफिट्स लेटर ऑन मिल सकन। सो 6472620000 चार जीरो ने जी पिछे वो तुसी मिला लो ते फिर इंजॉय करो अपनी सेल दी शॉपिंग नू ते जे उत्थे पहुंचदे हो ते सिद्धू साहब दे थ्रू साडे नाल गलबात करना बिल्कुल ना भुल्यो जी, क्योंकि मैनू इंतजार रहेगा कि थोड़ी आवाज मैं सुना उतों दी।

0: बजे तक मेरा दिन थोड़ा साथ खूबसूरत साथ बना रहेगा। खूबसूरत साथ में और खूबसूरत बनाया जा सकता है, चार चंद लाया जा सकता है, इस महफिल नो ज्वाइन किया जा सकता है। 905-500-44 905-564-6444 इज द स्टूडियो नंबर। इस नंबर पे कॉल करना बिल्कुल ना भूलियो। वैसे तो उसी कॉल कर रहे हो लेकिन वो तो असी लाइव ऑन लोकेशन पे, हमने थोड़ा सा इंतजार, फिर उसके बाद बहुत सारिया गल्ला।
1: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one get one free every day. Sure 10 to sham 7 baje tak on dine in and take outs. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday manpasand kulcha plate. Tuesday chana bhatura. Wednesday lajawab veg thali. Thursday yummy haka thali. Friday maza lavo saag makki di roti da. Hey yummy deals are simply Indian. This sariya hi locations se. Dining, take out and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab simply

हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मोहब्बत सी लगती है। पहले सही सोचा था, अब सोचने लगे हैं, पहले नहीं सोचा था अब सोचने लगे हैं, जिंदगी के हर लम्हों में तेरी जरूरत सी लगती है। और ये रातें क्या, दिन क्या, हर हर लम्हा पल पल तेरी याद।

0: अच्छा झूमर खेडी जा ते झूमर पाई जा, ये बहुत ही खूबसूरत पल जेडे अपने लाइफ पार्टनर दे नाल तुसी जी रहे हो। मॉर्गेज दी गल कीती असी, अपलायंसेस दी गल कर लेने। फर्स्ट टाइम होम बायर, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय अपलायंसेस, एक ऐसी जगह तो जिथे रिलायबिलिटी इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, सब तो पहला रिलायबल कस्टमर सर्विस देना इन्हों का मोटो है। कितने भी थोड़ा कितने ना कि कोई गुंजाइश होंगी है कि हाँ ये अपलायंस मेरे घर के लिए ठीक रहेगा, मेरी नीड्स एंड वॉन्ट्स के लिए रहेगा ठीक, तो फिर गाइडेंस अगेन गाइड बहुत अच्छा करेंगे। मनजीत सिंह के नाल असी गलबात करन जा रहे हैं जी, अपलायंस जंक्शन तो साडे नाल जुड़ चुके हैं। इन्हों तो जानते हैं कि अज वीकेंड की डील्स कि लैके आए हैं साडे स्रोतियों वास्ते। जी ओवर टू यू मनजीत जी।
1: थैंक यू सो मच ग्लोरिया जी, तो प्रोग्राम सुनते सारे श्रोतों ने मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल जी। तो इस वीकेंड दी स्पेशल डील्स ने, सब तो पहले जेड़े भी फर्स्ट टाइम होम बायर ने जी या फिर तुसी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, पांच दे पांच अपलायंसेस का प्रीमियम कॉम्बो है जिसे 36 इंच का आइस एंड वाटर डिस्पेंसर ऑन द डोर वाला फुल साइज फ्रिज है, ग्लास टॉप का इलैक्ट्रिक स्टोव है, कन्वैक्शन से एयर फ्री ओवन के नाल बिल्ट इन स्टेनलैस स्टील की डिशवाशर है विद फ्रंट लोड का स्टेनलैस स्टील कलर का वाशर से ड्रायर का पेयर है, $6500 की वैल्यू के पांच प्रीमियम स्टेनलैस स्टील अपलायंसिस का कॉम्बो है जिहड़ा कि सिर्फ $3999 च इस वीकेंड तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। जे तुसी अपना किचन रेनोवेट कर रहे हो बिल्ट इन अपलायंसिस दे विच जे डील देख रहे हो तो अप टू 35% डिस्काउंट बिल्ट इन अपलायंसिस दे उपर अवेलेबल है जिहदे विच किचन एड, जेनियर, वर्लपूल, मेटैग, सैमसंग, एल जी, बॉश, इलैक्ट्रोलक्स ते जीई वर्गे ब्रांड्स अवेलेबल ने। जिहड़े भी कस्टमर इस टाइम लॉन्ड्री सैक्शन च डील देख रहे हैं फ्रंट लोअर का स्टेनलैस स्टील कलर का अल्ट्रा लार्ज कपैसिटी का सैमसंग ब्रांड का वाईफाई कनेक्टिविटी वाला वॉशर ते ड्रायर का पेयर है जिहड़ा कि $2200 की प्राइस तो घटा के $1499 अज शाम 7 बजे तक अपलायंस जंक्शन से लगा सकते हैं। तो लास्ट के विच साडे टीवी सैक्शन च 98 इंच का सैमसंग का LED स्मार्ट 4K टीवी $3500 की प्राइस तो घटा के सिर्फ $1899 च इस वीकेंड तुसी अपलायंस जंक्शन से लगा सकते हैं। 6 मंथ पेमेंट करनी है, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। नंबर टू कॉल है जी 905-450-0054-905-450-0054 अपलायंस जंक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अपलायंस जंक्शन से गेड़ा लाना बिल्कुल ना भूलो जी, इन्होंने दो लोकेशन अपनी खोलनिया ने थोनू सिर्फ सेवावां देने वास्ते। सो बने रहो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो प्रोग्राम के नाल, बड़ी ही छेती दिन वज जाने ने ते बस एक घंटा रह जाना थोड़े ते मेरे साथ दा, लेकिन उस तो पहला गीत संगीत चलना चाहिए, गल्लां बातां चलदिया रहनिया चाहिदियां ने क्योंकि साडा प्यार थोड़े नाल बहुत ज़्यादा है। सो इंजॉय द प्रोग्राम, 4 बजे तक थोड़ा ते मेरा खूबसूरत साथ बनया हुआ है।
2: चुप कर लंघ जावे कोल

0: है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है, हमें उसका पता मालूम नहीं है। आप थोड़ा बाजा बजाएंगे हैं, पैसे बाद में।
1: देखो हाउ नेचुरल दिस, ही कैन ओनली डू इट। किन्ने नेचुरली, ये तो जिन्हों नहीं भी प्यार होएगा वो भी कह देगा कि हाँ है मैनू प्यार।

राइट ऑन द स्टूडियो क्लॉक, जान दा वेला हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें भी साडे श्रोतिया ने प्रोग्राम सुनिया, आवाज सुन के तुसी ग्रैंड होम फर्नीचर ते पहुंचे, शुक्रिया दिलों दिलों दिलों, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवनिंग अ लाइवली वन। सच दसा तो जो तीन घंटे के प्रोग्राम थोड़े नाल मुखातिब हो जानी है ना ऑन एयर आके तो रूह खुश हो जाती है। बाकी मैं तेनों फिर मिलांगी, कितने किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखील दी चिनक बन के तेरे कैनवस से उतरांगी या खोरे तेरे कैनवस के उत्ते एक रहस्यमई लकीर बन के खामोश तेनों तकती रहांगी। पर मैं मिलांगी जरूर, मैं तेनों फिर मिलांगी। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय कैनेडा डे, एंजॉय द समर।

0: ले ड्रायर ऊपर स्टैक हो जाएगा। ये 27 इंच वाइड ते 76 इंच हाइट है। ये तुहानू मिलना है जी $2200 तो $1499 दा, $700 कल्ले वाशर एंड ड्रायर ते सेव कर लेने तुसी, ते पेमेंट 6 महीने जी करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहुंचना कित्थे है तुसी जी, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड, Brampton TV and Appliances, 905-450-2828। न्यू मार्केट आ लियो, एजेक्स पिकरिंग आ लियो, मार्कम आ लियो, किचनर कैमरेज स्टोनी क्रीक आ लियो। ये कैनेडा डे दियां स्पेशल सेलां नू मिस ना करना, पेरिस ओंटेरियो, लंडन ओंटेरियो आ लियो, या तुसी नियाग्रा फॉल या वेलैंड एरिया च रह रहे हो, ये सेलां जड़ियां बेस्ट सेल है। जे तुहाडी जुलाई अगस्त सितंबर च भी घरां दी क्लोजिंग आ रही या रेनोवेट कर रहे हो किचन नूं, ते जुलाई अगस्त सितंबर च भी चाहिए तद भी तुसी इस लोएस्ट प्राइस नूं लॉक कर सकते हो। बोवेड एंड चिंकूजी ते बेस्ट टाइम है, इस वीकेंड ते पहुँचना है, इस वीकेंड ते पहुँच जाओ। जे तुसी कैनेडा डे वेंसडे वाले दिन पहुँचना है ते वेंसडे वाले दिन पहुँच जाइयो, डीलां नूं लॉक कर लेना। 905-450-2828 75 इंच टीवी चक लो अज 899 ਦਾ,
1: ਕੈਨੇਡਾ
0: ਸਿਰਫ 899 ਦਾ।
1: ਵਾਹ,
0: ਜੇ 65 ਇੰਚ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਅੱਜ 699 ਦਾ, ਜੇ 55 ਇੰਚ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਅੱਜ 399 ਦਾ, ਜੇ 40 ਇੰਚ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਅੱਜ 199 ਦਾ।
1: ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ।
0: 905-450-2828, 905-450-2828, BramptonAppliances.com ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੇਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ, ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੇਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਈਟਮ 40% ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਈਟਮ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ। 905-450-2828, BramptonAppliances.com, 905-450-2828 ਜੀ।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग 7:02 हो गया जी रेडियो अंदाज तुसी ट्यून कर चुके हो चलो एम 5:30 ते रेडियो अंदाज दे विच मैं थोड़ी होस्ट परम हाजिर हो चुकी हाँ मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नू सारे परिवारों नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नू खुशामदीद एंड स्वागतम

दिल गुमसुम जुबां खामोश क्यों है, ये आंखें आज फिर नम क्यों है। जब तुझे कभी भी पाया ही नहीं है तो फिर आज खोने का गम क्यों है। माहौल गुमसुम हो तो इंसान भी उस माहौल में गुमसुम सा हो जाता है, मगर उस वक्त चाहने वालों को अगर किसी का इंतजार होता है तो बस किसी अपने का। अब आपकी नजर पुरसोज पुरनूर दिलकश आवाज जगजीत सिंह की।

प्यार करना सिखा दीजिए, मुझको मुझसे मिला दीजिए, दर्द दिल का जरा कम तो हो कोई ऐसी भी दवा दीजिए, रह के खामोश मेरे ऐ सनम यूं ना सजा दीजिए, मेरी तिश्नगी को मोहब्बत का समंदर बना दीजिए। समीन रंगों की इस महफिल में कुछ रंग बेरंग भी हो जाते हैं, तो आइए कुछ ऐसे ही अंदाज में गाई हुई एक खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूं, जिसे अपने दिलकश आवाज के साथ नवाजा है लता मंगेशकर।